अयांतन परावर्या राग आसा महला चौथा सौ पुरख इक्या ओंकार सदगुर प्रसाद सौ पुरख नजनार पुण्यन गमा गम पारा सब त्याम है सब त्याम है तो जी हर सचे सिनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया वो संतो जी सब दूब सार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कड़ कड़ अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरुष माना एक दाते एक पेखारी ही जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बयान जी तेरे क्या गुण आप खाना जो सेवै तो जी जा नानक तिन कर बाणा हर त्यावे हर त्यावे तो जी से जंजुग में सोवासी से मोहत पै जिन हर त्याया जी तिन तोटे जम की फासी जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी त्यार रूस मासी से तन जिन हर त्याया जी जन नान तिन मल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत तेरे पसलां तो जी अनक अनेक अनंता तेरे अनेक त्रिकर पूजा जी तब तापे जय बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी कर क्रिया खाट कर्म करंता से भगत पल नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुर परम पर करता जी तुझे वडवर न कोई तू जो जो एको सरादा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुदे आपे से सब पाई जी तुदे आपे से सब गोई जन नान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानू आसा महला चौथा तू करता सचार मैडा साई जो तू पावे सोई ही थी सी जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ साब तेरी तू सबनी त्याया जेनो कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरमहलादा मनमो गवाया तुदे आप विछोड़िया आ मलाया तू दरियाओ सब तुझी माए तो बिन दूजा को ही ना जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुंसा दी आप खाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वरना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जा नानक गुरम प्रगटोए आसा महला पहला तित सरवले भैले नवासा पानी पाव तिने किया पंग जमो पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हूं जती सती नी पड़िया मूर्ख मुदा जन्म भया प्राणवत नानक तिनकी सरना जिन तो नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल सा संत पाई के वंदा सरंजाम ला पौ जल तरन कै
जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ। जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच क्रमा, शरण परे की राखो शरमा। पातशाही दसवीं काव्यो आज बेनती चौपाई, अमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताव चरण मरह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दो सवे तुम कहावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सोही वसे मोरो परवारा, सेवक से सबे करतारा। मोर अच्छा नहीं कर दे करिया, सब ऐरन को आसंगरिया। पूर्ण हो हमारी आसा, तोर बहन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार जाऊं तुम ते पाऊं। सेवक से कम मारे तारी है, चुन चुन सतरा मारे मारी है। आप हाथ दे मुझे अबरी है, मन का हल्का त्रास नवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तो जो करियो रच्छा। हरा लियो मोय राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कांता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर में प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जौन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देवदा जशन उपजायो। आद अंत कह अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सर पर जाजने आप सवारी। सेवगन गो सेवगन सो दियो, सतरन गो पल मुंह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पिछानत। चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सब पर कृपा दृष कर फूला। संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पिछान है, खट खट के पढ़ पढ़ की जान है। जावद कर करां कर तारा, पर जा तर तव दे अपारा। जाबा कर कर तो कब हूं, तुम्हें मिलत दे तर सब हूं। जेते बन से सब तारे, आवे अपने बूझ उचारे। तुम सा भी ते रहत नरालम, जान बे पे दरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद संभ। ताका मूढ़ चात पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपान अनुमानत, महा मूढ़ कर पे न जात। महादेव को कह सदाश, निरंकार का चीन न भे। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखन जाए पसारा, के बेसा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पेहराव कहीं भूपा। अंडर जर से तज कीनी, उत्पय खान बहोर रच दीनी। कहूं बूरा जाऊं बैठा, कहूं सिंह प्यो शंकर कैठा। सारी से दिखाए अचंभव, आज गास रूस अंभव। अब रचा मेरी तुम करो, सिख अबारे सिख संगरो। दो जित उठ तो पाता, सगल मलेश करो लड़ंगाता। जया तो सब सरनी परे, तिन कह दुष्ट दूत है मरे। पुरु जन बापरे तिहारे, तिन कह तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रचा होए ताए सब काला, दुष्ट री टरे तद काला। किरपा दृतन जाए न हर हो, ताके ताव दंग में हर हो।
रिद सिद कर मुँह सब होई, दूसै सह सके ना कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फांते ताय बारा, जिन्दा ना

हरी सर्वडोन मोहो सहाई दुल्ट दो तेल्यो बचाई सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते को तरे नहीं आने ओ राम नी पुराण कुरान ने कह मत एक न माने ओ सिमरत सातर बे सब बहु भेद के हम एक न जाने ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने हो दोहरा सल द्वार को छाड़ के गहो त्वारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंदास त्वार राम कली महला तीजा आनंद क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सह सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो तांगा वो हरी केरा मन जी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे तू सावे सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सब ना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करदा तेरे सब किच है जे दे सो पावे सदा सिसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसे आओ वाजे शब्द गनेरे कहे नान सचे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सो मन वसया जिन शां सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरविट जे दियां बड़े आईया कहे नान सुनो संतो शब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पण शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारी आ पंज दो तुद वस कीते काल कंडक मारे आ तुर करम पाया तो जिन को सिर ना मार के लागे कहे नान ते सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दूरो संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुरिया भरपूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सात संदो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूंज तिसका होय उदारो ए वस्त ही न जाई नेतन ठाकुर तारो तम सदार चन लग तरी है सब नान ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाई मैनू जो कि तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पे आ मेहराम तो होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा
तन मन तीवे हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकर तुम

जाने ऊचे ते ऊचाप सगल समग्री तुमरे तुम ते हो ऐसो तुमरी गात में त नानक दास तुमरी गात मेत नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी क्यों ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकाय गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जे डिठै सब दुजाए तेग बहादुर सिमरिया कार नौन दे आवे ताए सब थाई हो सहाय दसवीं पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई हो सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे पंजा प्यारिया चौं सब जादिया चालिया मुक्तिया अठिया जपिया तपिया शहीद सिंघा सिंघणिया जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेगवाई देख कीता तिन्हां गुरमु प्यारे सियारे की कमाई का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते बांध बांध कटाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विचों वाले के खोपरियां लोहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कहिगा सहार दे शीदो सिकिद के सा सुवासा संग नवाई तरमनी हारिया तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां अरछर जाय दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले खालसे सब बोलो जी वाहे सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशदान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल वाले खालसे सब बोलो जी वाहे सिखा ना मन नीवा मात उचे मा दे राखे आप अकाल पुरंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पंथ दे सदा सहाय दतार पिता जीओ श्री ननकाणा साहिब गुरुद्वारे जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी नमाणिया दे माण नताणिया दे ताण न्योटियां दी ओड़ने आसरे दे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप ही दा कोटान कोट शुक्र आप ने अपार बख्शे रहमत कृपा कीती 1604 नूं अज दे दिहाड़े तां दाता जी आप जी ने दरबार साहिब अमृतसर वाले प्रकाशवन होके संगतां सुंदर शंदारे बख्श के निहाल कीता सरबत संगतां आप दा पहला प्रकाश दिहाड़ा बनाउंदे आप दे हजूर शामां दे दीवान सजे सजे दीवाना विच सब चौंक च कीर्तन सोध रहा सब दे पाठ होए ने अखर दा वादा कट्टा पुल चौक दी खिमा बख्शनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा सरबत संगतां दी हाजरी तिल फुल पिटावां रसदा आदिक अपने दर ते प्राणियां सिर ते मेहर प्रयातकड़ा तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारों में सुख वरता सरबत संगतां दे कारोबारी प्रेम बरतां बख्शणियां अते गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की सेवा करदा इसे तरह उदम बल बख्शण धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी मेहर करनी रहमत करनी अपने समुचे संसार के सिर मेहर प्रयाहत रखे सरबत संगतां नूं आप दे बख्शे हुए उदेशां ते चलन का बल बख्शणा बाणी ते बाणे नाल प्यार गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की सेवा करदा उदम बल बख्शिश करना अंग संग साई होके वर्तना हर मदान फतेह बख्शनी दरों करों वसाए होए नगर जनेतपुरा दियां संगतां अते भाई सुखचैन सिंह परिवारां वल्लों श्री खंड पासा कीर्तन अते गुरु के लंगरां दी सेवा हो रही है मेहर करनी दाता जी परिवारां दी नगरां दी सेवा थाए पौनी परिवारां नूं चढ़दियां कलावणां नगरां दे सिर ते मेहर प्रयात करना कीर्तमां बरकतां बख्शिश करनियां
ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਤਰ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਾਉਣੀ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਇਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ, ਜਿਹਾ ਚੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਦਾ ਬਲ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ।

नाहे मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तैत नहीं नेत नानके बिद हर भजो एक मन हो एक चेत तीरथ बरते और दान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात ते ज्यो को जरे शिनार सिर कंप्यो पग डगमग नैन जोत ते हीन कौ नानके बिद पई तो नारसलीन निज कर देखियो जगत में को काहू को नाय नानक तेरे अर भगत है तेरा

की पीता। राम गयो रावण गयो जाको बो परवार, कहो नानक तेरे कछ नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकी की जी है जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज कह काल, नानकार गुण गाए ले शाड़ सगल जंजाल दोहरा। बाल छुट क्यों बंधन पर है कछु न होते अपाए, कहो नानक अबे ओट हर गाजो सहाय। बालो आ बंधन छुटाए सब किस होते अपाए, नानक

राग माला राग सब पंज ब्रंगन संग लापे अठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंज राग नी संग उचारई प्रथम भैर वे बेलावली पुनिया की गावे बंगले पुन लेके गे पे बारी है पैरों की पंचो नारी पंज मर्द सा सुना वह बंगाल मद माधव गावे लत बिलावल गावे अपनी अपनी पां ते अस पुत्र पैरव के गावे गायन पातरे दुधिया माल कौस गला पै संग रागनी पांचों था पै गुण करी और देव गंधारी गंधारी सिंहती उचारी तनाश्री है पांचों गाय मारा कहो साक संग लाई मारो मतंग में वारा पर बलचन कौस के बारा खौखड़े पौर खौखड़े पौर नद गाये अस माल को साक संग लाए पुनायो हिंडोल पंजनार संग सोता उठे तान गलोहल गाय तार मिला भी तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई ससी लह पार जा संगलाई पांचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्रन में मंगल सहाय सरस बान वाय भनोदा गावे सस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र में कह सवारी पुन आई दीपक की बारी का शेली पड़ मंजरी टोडी कही हलाप कामो दियो गुजरी संग दीपक के था कालंगा कुंतले ओ रामा कमल को चंपक नामा गौरा कमला कल्याण अष्ट पुत्र दीपक जाना सामे सिरा बह गावे पांचो संग ब्रंगण लावे बैरारी करनाटी तरी ही गौरी गावे आसा बरी ते बाजे सिंधवी अल्ला पी श्री राग सिंह पांचो ता पी सालु सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग गुण कौम अमीर कष्ट मेघरा बह गावे पांचो संग ब्रंगण लावे सोठ गुण मलारी तो नहीं पुन गावे आसा गुण गोने ऊंचे सुर सो पुन कीनी मेघरा सिंह पांचो चीनी बैरा दर गिरदारा जब दी तड़ो जल तारा पुन गा

चातरक ज्यों तर सतर है तन को कौन हवाल। कबीर च कोई जो निस बिछ रे आए मिले प्रभात।

वह सुख कबीर सूता क्या करहे, उठ के ना जपहे मुरार। एक दिन सोवन होएंगो, लांबे गोंड पसार। कबीर सूता क्या करहे, बैठा रहो यार जाग। जाके संग ते बिछुरा, ताही के संग लाग। कबीर साकत संग ना कीजिए,

कबीर खे हुई तो क्या पहया जो उडला गय अंग। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वांग। कबीर पानी हुआ ता क्या पहया शीरा ताता होए। हर जने ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊच पवन कनका मनी शिखर तजा फहराए।

कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभै ओड़। हीरा किसका बापोरा पूजे ना रतन करोड़। कबीरा एक अचंपाओ देखियो हीरा हाट बिकाए। बन जन हारे बाहरा कौडी बदले जाए।

कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जान जाओ हरी, ले कै मांडे हाट, जब ही पाइए पार खू तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमर हो नित, अमरापुर बासा करहु हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जेह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक आव घाट घाटी राम की, तेह चढ़ रहयो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चालत कुल की कान, ताब कुल किसका लाज सी, जाब ले तरहे मसान।

कबीर दावे दाजन होत है, निर्दावे रहे निशंक। जो जान निर्दावे रहे, सो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा, सर्वर परा, पी न सके कोई नीर। बाग बड़े तै पाए ओ तू, भर भर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसहे, त्यों हे खिसे शरीर। ए दो अखर ना खिसहे, सो गए रहे ओ कबीर। कबीर कोठी काठ की, दह दिस लागी आग। पंडित पंडित जल मुए, मूरख उबरे भाग। कबीर संसा दूर कर, कागद दे बहाय। बावन अखर सोध कै, हर चरणी चित लाए। कबीर संत न छाड़े संत ई, ज्यों कोटक मिलहे असंत। मले अगर पयंगम बेडे, ओ ता सीत लता ना तजंत।

कबीर सारी सिरजन हार की जाने नाही कोए, कै जाने अपन तनी कै दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो पहो परिया दिसा गई सब भूल, और अगर पानी पया जाए मिले ओ ढल कूल। कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बांदी देहे, दिवस चार को पिख ना अंत खेह की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देहे, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जहां अन पाओ तहां पै नहीं, जहां पाओ तहां हर नाहे। कहे ओ कबीर विचार कै संत सुन हो मन माहे। कबीर जिन्हों किछु जान्या नहीं,

कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और लागी चोट मरम की, रहयो कबीरा ठौर। कबीर चोट सहेली सेल की, लागत ले उसास। चोट सहारे शब्द की, तास गुरु मैं दास। कबीर मुला मनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए। जा कारण तू बांग देहे, दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेह सिमरत दुख जाए। दिल में साहीं प्रगटे, बुझे बुलंती नाए। कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता नाओ हलाल।

है, हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे, भूत बसहे तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाव होते पिंगल पहया, मारिया सत गुरबान। कभी

कबीर निर्मल बूंदे आकाश की, पर गई भूम बेकार। बिन संगत यो मन ही होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंदे आकाश की, लीनी भूम मिलाए। अनक सियाने पच गए ना निरवारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलया खुदाए। साई मुझ स्यों लर परया, तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया, केती बार कबीर। साई मुझ में क्या खता, मुख हो न बोले पीर। कबीर जिय जो मारहे जोर कर, कहते है जो हलाल। दफ्तर दई जब कार्ड है, होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए। दफ्तर लेखा निक से मार मोहे मोहे खाए। कबीर लेखा देना सुहेला, जो दिल सूची होए। उस साचे दीवान में पल्ला न पकड़े कोए। कबीर धरती अरे आकाश में, दोए तू बरी अबद। खाट दर्शन संसे परे, आर 84 सिद।

तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू दू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आप पर का मिट गया, जात देखो तात तू।

कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। हित उतकत हे ना डोलई, जिस राखे सिरजनहार। कबीर काणी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए, परा पूर्बली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए,

कबीर कूकर पौक ना करंग पिछे उठताए, करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। महला पंजवा। कबीर धरती साध की तस्कर बैसे गाहे,

काहे छिपहो छाए लै राम ना लावहु चीत। नामा कहत लोचना मुख ते राम समाल। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा। कबीर हमरा को नहीं हम किस हूं के नाहे। जिन हि रचन रचाया तिस ही माहे समाहे। कबीर की चढ़े आटा गिर परया किछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगण करै।

भर जै लोग अजान, ता स्यों टूटी क्यों बने, जाके जिय प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरहों सवार।

पाप करंता मर गया, औद पुन्नी खेन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात।

कबीर के सो कुकिए ना सोये आसार। रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पहया मन कुंचर मैं मंत। अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख को थरी पारख आगे खोल। कोई आए मिले गो गाह की ले गो महंगे मोल।

कबीर अखी केरे माँ टुके पल पल गई बिहाए। मन जंजाल ना छोड़ोई जमदिया दमामा आए। कबीर तरवर रूपी राम है फल रूपी बैराग। छाया रूपी साध है जिन तजिया बाद बिबाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारहा मास फलंत।

कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी, बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्रापति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक ना अब घट घाट। कबीर एक घड़ी आदि घरी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ भरत नेम किए, ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोयन कर रहो, ले साजन काट माहे, सब रस खेलो पीसो, किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो,

सुन सखी पिय मह जियो बसै, जिय मह बसै कि पियो, जियो पियो बुझो नहीं, कट मै जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पच मुआ, चारो बेद हो माहे। हर है खांड रेत मह बिखरी, हाथी चुनी न जाए, कह कबीर गुर भली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की,

कबीर जो तोहे साध पे राम की पाके सेती खेल, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंध गत अर चीनत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतों भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो गृहो करहे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे ता को बड़ो अपहाग। हर सो हीरा छाड़ के

जासी प्रणाय। अपन हथी जोल कै गल लगे ताय, वालो निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए। फरीदा कीड़ी पबंदी खड़ा नाया पमुहाए, फरीदा दर दर वेसी गाखड़ी चला दुनिया पत। बन उठाई पोतली किथे वंजा कत, किजना बुझै किजना सुझै दुनिया गुजी पाहे। साई मेरा चंगा कीता नहीं ता हम्पी दंजा आहे। फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक परी, जे जाना सो नंदड़ा ता थोड़ा मान करी।

जंगल क्या टूडे फरीदा इन्नी निकी जंगी है थल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कुजड़ा सै को हाथी ओम फरीदा राती वड़िया तुख तुख उठन पास तिग तिना दा जीविया जिना विडाणी आस फरीदा जे मैं होदा वारिया मिता आयड़िया हेड़ा जलै मजीठ जो उपर अंगारा

गणेशन गे दुख, रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी, ना तरसाए जियो। अज ना सुती कंत स्यो, अंग मुड़े मुड़ जाए। जाए पुछो डोहागणी,

नौबत वजी सुभा स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडी है सुतियां मिलै ना पाओ। जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन कुआओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाइया जग। ऊचे चढ़ के देखिया ता कर कर इहा यग। महला पंजवां।

रहित बिड़िन कपर क्या करे जे पातन रह सुचेत। फरीदा गली सो सज्जन वी एक टूडें दी नाल हा

कागा चूंड न पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरा मेरा सोह वसै मास न तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे नी करे आ कर आओ सर पर मैं थे आवना मरणो ना डरिया हो।

मत होदी हुए ए आणा, ताण होदे हुए ने ताणा, एण होदे आ पवंडाए, को ऐसा भगत सदाए, एक फिका नांगा लाए, सबना मैं सच्चा तनी, हिया ना कहि ठाहे, माणक सब अमुल वे, सबना मन माणक, ठाहण मूल मचंगवा, जे तो प्रिया दी सेक, हियाओ ना ठाहे कही दा।

प्रसाद सवैये श्री मुख बाख महला पंजवा आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो ब्यापे व्यापत देखिए जगत जान कौन तेरी गत सर्व की रख्या करे आपे हर पात अविनाश।

प्राण को आधार। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बखाने। हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार। पर परहिते परै परय पर पर अपनो पावन कर, मंत्र न दूसरो कर। अपनो पावन कर मंत्र न दूसरो धार, उपत पढ़ लो एक निमख तू कर। आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट पराचित जाहे नाम लिए हर हर। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बखाने। हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे कथे किए बिस्तारे। पूर रहो सरब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे। जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक लख मुरारे। आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बखाना। हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधान कीमत न ज्ञान। ध्यान उचित उचो जानी जय, प्रभ तेरो थानं। मन तन तेरो प्राण, एक सूत है जहान। कवन उपमा देयो बड़े ते बडानं, जान कौन तेरो पियो। अलाखे अपार देयो अकल कला है प्रभ, सर्व को तानं। जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बखाना। हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अचल पूर्ण विनाशी। हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी, गुण गावे बेअंत अंतिक तिल निपासी। जाको हुए कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिला सी। तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर भयो। हर गुरु नानक जिन परस्यो, से जन्म मरण दोहते रहो। सत सत हर सत सत सत सत पणिया, दूसर आंदना अवर पुरख पौ रातन सुनिया। अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए। जेह रसन चाखियो तेह जन तृप्त्या काय। जे ठाकुर

तिन सब कुल कियो उधार। सच सबा दीवान सच सच्चे पै तरयो, सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो।

ले रखी निरारी। तावन पावन कूरक मावन यह विद करत औद तन जारी। कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल विदहारी। पसपंखी बिरख स्थावर बोबद जोन प्रमेवत भारी। खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बात होत कत खारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादग शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरण गगन आवत फुण तावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिलता को मर्म न पावत। प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जनता के दर्स समावत। तिसै त्याग यान को जाचे मुख दंत रसन सगल का सजावत। रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत। माया रंग बिरंग करत परम मोकै कूप गुबार परयो है। एता गब आकाश न मावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है। दैदस ताए महा बिखिया को पर धन छीन अज्ञान हरयो है। जो बन बीत जरा रोग रस्यो जिम दूतन डन मृत मरयो है। अनिक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गरत गरयो है। प्रेम भगत उदरै से नानक कर कृपा संत आप करयो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्ब रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सोचे क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंदप जी धान प्रभ प्राण दारी। उठ गही स्वामी समर्था नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंदेव ना जात बिदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात रहयो जन धूर लग। नीर न साकस बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोच द हर नाम खग। उद्दम कर लागे बो भाती बिचरै अनक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीरथ बो भ्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चकर करत सोम पाका यनक पांत थाटे करत हटुआ। सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता। तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गाव गुण परम गुरु सुख सागर द्रुत निवारण शब्द सरे। गावै गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे।

गावजन खाद जुगत जोगेसर हर रस पूर्ण सर्ब कला। गावजन काद गावे सन काद साध सिद्धादिक मुन जन गावे अछल चला। गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत भाई रस जानियो। कब कल सो जस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो।

और जोत जग मंडल करियो जग कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो जिस कहाँ संग रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल ने मलयब तरियो।

हरिओ निसबासुर एक समान ध्यान सु नाम सुने सुत भान डरियो पण दास सुहा सजगत्र गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरत गुरु सिर हथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाकश फारे करयाज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्त्र दीन बौसाज सुदामा अपदा ते राखिया कनका भरत पूरे ते काज श्री सतगुरु सो प्रसन्न कलयुग होए राखो दास पाठ की लाज झोलना गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जपै नाम नाम निधि अपै रसनिय रस रसै सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइये गुर मुखै तिहाइये अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों बचन गुर रिद धरो पंच पू बस करो जन्म कुल उद्धरो द्वार हर मानियो ज्यों ता सब सुख हित उत तुम बंचवो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियों गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर अगम गुण जन दान हर मन धरो ध्यान यह नस करो बचन गुर हृदय धारो फुन गुरु जल विमल यथाह मजन करो संत गुरु सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभउ जपै प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हारू मुग्ध मन परम तजो नाम गुर मुख पजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर गुरु गुरु गुर करो गुरु हर पाई उदर गुरु गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुरु त्याई है अमृत प्रवाह छुट कंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्भाण निधान हरि उर धरो गुरु गुरु गुरु करो गुरु हर पाई है गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप मन रे जा की सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह ते तीस गुरु बचन सुन कन रे फुन तरह ते संत हित भगत गुरु गुरु करें तरु प्रहलाद गुरु मिलत मुन जन रे तरह नारदाद सन काद हर गुर मुखे तरह एक नाम लग तजु रस अन रे दास बेनत कहे नाम गुर मुख लह गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप मन रे श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा सतजुग जिन ध्रु पर श्री प्रहलाद भगति उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद सगल शरण आई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोय गुर प्रसाद प्रपाइय गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लैणा थाप जोत जग तारी लैणै पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया तिन श्री रामदास सोढ़ी थुर तप्यो हर का नामे अखै निधि अप्यो अप्यो हर नामे अखै निधि चौं जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण परणं सतगुर गुर सेवै लखत जाकी श्री रामदास तारण तरणं।

निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह न सकै को तू कद का। ब्रह्मा बिशन श्री तय गणत, तिनको मोह पया मन मद का। 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं को तद का। सेवक भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाह वाह का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर प्रगाशा, आपे जाल आपे थाल थम्मण, आपे किया घट घट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाह वाह का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मा दिक रुद्रा दिक काल का काल, निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाई परमारत, सत्संगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनादि आद जिस कोई ना जाने, शिव बिरंच तर ध्यान नित जिस बेद बखाण। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन कण समत तरन तारन प्रभु सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रस नारस है। श्री सत नाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्ता बस। गुरु समरथ गै करिया, त्रिबुद्ध समत समारण कौ। फन त्रम तुझा फैर अंत सदांग, पुंज तरंग निवारण कहो। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कशु न विचारन कहो। हर नाम बोहित बड़ो कल में, भव सागर पर तारन कहो। संतत ही सत्संगत संग, सुरंग रति जस गावत है। त्रम पंथ तर उतरणी तर, आप रहे लिव धारना तावत है। मथुरा पन पाग पले उनके,

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट तद्दिन आगरु। गहर गंभीर गहर गंभीर अथात बरसो भर सदा सभ्य रत्नागर संत मराल करें कंतुहाल तिन जम त्रास मिट्यो दुखा गुरु। कालयुग धुरत दूर कर वे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मोन ध्यान तर फिरत सगल जुग काबहू को पावे आत्म प्रकाश को। वेद बाणी साहित्य बिरंच जस गावे जा को शिव मुन गहना तजात कमिलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेक किए फिरते उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोग प्रगाशे देखत दर्श पटक प्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा अलुभत सेवक सिख सदात लुभित अल समूह ज्यो कुसम सुबासे। विद्यमान गुर आप थप्पे उथिर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद्धर सिद्ध न छोड़ै साथ। दान बड़ो अतबंत महाबल सेवक दास कयो एह तथ ताहे कहां परवाह काहू की जाके बसीस धरयो गुर हथ। तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन सरस की न जगत कोई अपने आप ही पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी चल अजोनी संभव पुरखो तमे अपार परे करण कारण सम्राट सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसे हुई गुर अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर दयायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तै हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भक्त हर के जोगण अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अबर कबीर भणंग तन को अवतार पयो कल भिंतर जस जगत्र परछायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तै हर परम पद पायो। मनशा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिण बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दरस परस पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। जिह सत गुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिना जिह सत गुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिना। जिह सत गुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जी सत गुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नाम निद पावे। सोई रामदास गुर बल भाणो बिर संगत तन धन करो जी सत गुर लग प्रपाई है सो सत गुर सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नाश। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिम अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਇ ਪਉ ਮੰਨੈ, ਤੁੰਬਲ ਯਾਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਭਾਸੁ, ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ, ਨਾਮ ਲੈ ਤੁ ਉਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸੁ, ਜੇ ਭਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ, ਜੇ ਭਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਹੋ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ, ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੀ ਇਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ।

सोरठ। गुरु अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चल नहीं निजा नाम निशान। सतगुर शब्द सवार्यो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोध था तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उदरियो। जगत उदाहरण नाम सतगुरु तुठ पायो अबनाय अमर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी।

कृपा तारे अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो। गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण, मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण। सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आदि पुरख प्रतख, लिख्यो अक्षर मस्तक तुर प्रगट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो। पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो, भान मथुरा मूर सदा थिर लाए चित सनमुख रहो। कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लगबे तरो, ते जन जाचो जगत पर जानियत बासुर रैन। बस जा को हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो, बस ना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों। अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लागियो, बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों। मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुरु भगत कहित पाए रहो मिल राम स्यों। अंत न पावत देव सब मुनि इंद्र महाशिव जोग करी, फुन बेद बेरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट नियाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जन माहे तरी। जग और न जाहे महातम मैं अवतार, यो जागर आन कियो

कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचारिय है मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो। काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेखी अपार तास बिन अवर ना कोई। मन बच जिन जाण्यो भयो तहि सम सर सोई। तरण गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पार। पान मथुरा कछु भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सबनावै नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुगावै। अजय चबर सिर टुलै नाम अमृत मुक लियो। गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो। हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कह श्री गुरमयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो।

ताकत सों वैसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग। संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ। निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाओ। जन्मे का फल क्या गणी जाहर भगत न पाओ। पैंदा खादा बाद है जामन दूजा पाओ। वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा लाओ। नानक नाम सलाह तू होर होमै आवो जाओ। हैन विरले नाही घणे फैल फकड़ संसार। नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान। चूटै सेती जो मरै

लहां सो सजन टोल सजन सचा पातशाह सिर शाम दशा जैस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा सजन सचा पातशाह सिर शाम दशा जैस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा क्यों अंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नवा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन कहो नानक हर पज मना जे बिद जल को मीन बिखियन सो काहे रचियो निमग न हो अदास कहो नानक पज हर मना परे न जम की पास तरना पोयो ही गयो लियो जरा तन जीत कौ नानक पज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सो जय नहीं काल पहुँचो आन कौ नानक नर बावरे क्यों न पजे भगवान तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इन मैं का संगी नहीं नानक साची जान पतित उदारन पहरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानी है सदा बस्त तुम साथ तन तन जे तो को दियो

पर न जम कहताम जो प्राणी ममता तज लोभ मोहंकार कौन के आपन तरे और न लेते उदार जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत

बोधा उपज बिन सनीत जाग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंद कहो नानक बिन हार भजन परत ताहे जम बंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कौ नानक सुन रे मन दुर्लभ मानुख देह माया कारण तावही मूरख लोग अजान कौ नानक बिन हर भजन

बिसरियो गोबिंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतै मद माया कै अंद, कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे जम्बंद। सुख में बहु संगी पै, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर भज मन, अंत सहाई होय। जन्म जन्म परमत फिरयो, मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मंगा, निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहो, मिट्यो न मन को मान,

फुन तीन अवस्था जान कौ नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान करणो तो सो ना कियो।

चेतवत रे ओठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कौ नानक सुन रे मन हर पावे सो होए जगत पखारी फिरत है सब को दाता राम कौ नानक मन सिमरत पूर्ण होवे काम झूठे मान कहाँ करे जग सुपने जो जान इन मैं कश तेरो नहीं नानक के हो बखान गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत

एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन, स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बेदहार भजो, एक मन हो एक चित, तीर्थ वर्त और दान कर, मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात ते, जो कूं चरे शनान, सिर कंपयो पग डग मगै,

ஒரு பிரசாத ராக மாலா ராக ஏக சாங்க பாஞ்ச பரங்கண சங்க லாப்பே அட்டோ நந்தன் பிரதம ரா பைரோ வை கரஹி பஞ்ச ராகினி சங்க உச்சரை பிரதம் பைரவி பில்யாவலி புனிய கி காவே பங்கலை புனசிலே கி கே பே பாரி பைரோ கி பஞ்சோ நாரி பஞ்ச மரத சாசனா வை பங்கால மத மாதவ காவே ललत बिलावल गावे ही अपने अपने पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पातरे दुधिया माल का उसके लापै संग रागनी पांचो था पै गुण करी और देव गंधारी ही गंधारी स्यो होती उचारी तनाश्री है पांचो गाई मारा को साक संग लाई मारो मतंग में बारा पर बचन का उसके अभारा खोखड़िया पनंद गाए अस माल को साक संग लाए पुनायो हिंडोल पंजनार संग सोता उठे तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सर श्री लय पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बेमंगल सहाय सरस बहानु आए बनोदा गावे सर बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशे लिपट मंजरी टूटी कई अलाप कामो दियो गुजरी संग दीपक के दाप कालंका कुंतले ओ रामा कम तु चंपा के नामा गौरा कान ला कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के नाना समय सिरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते बासे सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचो दापी सालो सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग कह गुंड कौम गंभीर खष्ट मेघरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे सोट गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुनी उच्च सुरसो पुन गिनी मेघ राग सिंह पांचो चीनी बैरा दर गई दर के दारा जब दी तनड़े हो जल तारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघराग पुत्रन के

सब पुत्र रागन कह आठारां दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा। नंद क्या ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर दा पाया सह सेती। मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां। शब्द गावणे आईया शब्दो तंगा बोरी के राम मंजनी वसाया। कह नान गया आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे दूसा विसार। नांगी कारो करे तेरा कार सब सवार। सब ना गला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करदा दे रहे सब किजे दे सो पावे। सदा सिफ सला तेरी ही नाम मन विसावे। नाम जिनके मन वसे आवा जी शब्द गनेरे। कहे नान सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार। मेरा जिन भुखा साहब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन शाह साहब जाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटों जे दियां वड़ियाईया। कहे नान सुनो संतोष अवतरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार हो। वाजे पान शब्द कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे। कला जित कर तारिया, पाइन दो तो वास कीते काल कंटक मारिया। तोर करम पाया तो जिन कोस नाम हर के लागे। कहे नान होते सुख हुआ,